अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी। और दोस्तों, हर हफ्ते हमें रहता है इंतजार एक ऐसी शख्सियत से मिलने का इस कार्यक्रम में, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर उन्होंने अपना जीवन सेना के लिए समर्पित कर दिया और साथ ही साथ हम सबके लिए अनुभवों की एक मिसाल बन गए। और इस कड़ी में आज हमारे साथ हमारी अतिथि हैं भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे, जिन्होंने लगभग डेढ़ दशक तक भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा दी है। रिटायरमेंट के बाद वे कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रही हैं, साथ ही साइबर सुरक्षा इंफोसेक से जुड़े कार्यों में भी आप योगदान दे रही हैं। प्रतीक्षा ठाकरे का नाम विशेष रूप से उन महिला सैन्य अधिकारियों में लिया जाता है जिन्होंने भारतीय वायुसेना में नेतृत्व, अनुशासन और तकनीकी दक्षता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपकी विशिष्टता और विशेषज्ञता रक्षा सेवाओं, नेतृत्व, सुरक्षा और तकनीकी प्रबंधन में रही है। हम आपका स्वागत करते हैं प्रतीक्षा जी, और संदेश टू सोल्जर

0: टीचर्स में आज आपने समय निकालकर जो यहाँ शिरकत की इस कार्यक्रम में, उसके लिए आपके हृदय से आभारी हैं।
1: धन्यवाद विनीता जी, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच का हिस्सा बनना वास्तव में मेरे लिए सम्मान और गर्व की बात है, जहां मुझे पूरे भारत के सैनिकों तक अपना संदेश पहुंचाने का अवसर मिल रहा है।
0: जी शुक्रिया, इसलिए भी कि आपने आकाशवाणी में न केवल आकर हम लोगों को अनुभवों का खजाना सौंपा है, बल्कि इसलिए भी कि आप इसके लिए हमारे ही आभार जता रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले ही आपसे कहना चाहती हूं, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल, आप इतनी यंग हैं, और ऐसे में जब हम आपके साथ रिटायर्ड शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा समझ नहीं आता, क्योंकि रिटायर्ड तो आमतौर पे व्यक्ति 60 साल की उम्र के बाद होता है, तो आप इतनी छोटी सी उम्र में रिटायर्ड कैसे हैं?
1: बात आपकी सही है, क्योंकि मैं भी रिटायर्ड ये शब्द थोड़े से बुजुर्ग लोगों के साथ एसोसिएट करती थी, बट क्योंकि मैंने अपने लाइफ के प्राइम 14 साल एयरफोर्स को समर्पित किए हैं और उसके बाद मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ, इसी वजह से वो रिटायर्ड शब्द है, और वो मेरे लिए है पक्का, और डेफिनेटली इट इज नॉट फॉर द रैंक बट इट इज फॉर मी फ्रॉम द एयरफोर्स।
0: दैट्स सो सो ब्यूटिफुल। अच्छा एक बात बताएं, आपको कैसे लगा कि आपको एयरफोर्स में आना है, कौन था इसके पीछे या किससे आपको प्रेरणा मिली?
1: विनीता जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके पीछे कोई व्यक्ति नहीं है, बट ये ऐसी एक चीज है जो मुझे विरासत में मिली है
0: जी।
1: क्योंकि अगर मैं शुरुआत करूं तो मेरे दादाजी स्वतंत्र सेनानी थे जो भारत के आजादी के लिए लड़े। उसके बाद परंपरा बढ़ाई गई मेरे फादर ने, जो इंडियन आर्मी में भर्ती हुए और 25 साल की सेवा जो उन्होंने देश के लिए की, उसके बाद वो रिटायर्ड हुए एज कर्नल। और परिवार की मैं तीसरी पीढ़ी हूं जिसने सिर्फ यूनिफॉर्म वर्दी पहनने का सपना ही नहीं देखा बल्कि उसको जीने का सपना भी देखा।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसीलिए दोस्तों मैंने आप सभी से ये बात कही कि आज की हमारी अतिथि अनुभवों का खजाना है, और इतना कुछ है इनके पास हमें बताने के लिए, क्योंकि आपके परिवार में प्रारंभ से ही फोर्सेस के लिए बहुत रुझान रहा है ना। तो भारतीय वायुसेना में यानी इंडियन एयरफोर्स में जब आप आई तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था?
1: अच्छा विनीता जी मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगी
0: जी,
1: मेरे बचपन की तरफ, जहां पे मेरा सपना तो डॉक्टर बनने का था। जैसे उस टाइम पे जब मैं छोटी थी उस टाइम मेजरली दो प्रोफेशन ज्यादा नामचीन हुआ करते थे, एक था डॉक्टर दूसरा था इंजीनियर, की ये दो प्रोफेशन है तो आपने जिंदगी में कुछ पा लिया है नहीं तो नहीं। जो मैं अभी सोचती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बातें हैं, और भी बहुत अच्छे प्रोफेशन हैं। बट हालांकि उस टाइम मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, और जैसे मैंने आपको बताया मैंने घर पे एक ही प्रोफेशन देखा था, वो था देश सेवा का
0: जी।
1: तो तब मैंने ठाना कि अच्छा डॉक्टर बनूंगी तो डिफेंस फोर्सेस में ही डॉक्टर बनूंगी, ताकि मेरे दो सपने पूरे हो सके, एक तो देश की सेवा और देश के नागरिकों की सेवा। तो मैं पढ़ाई में अच्छी थी, पढ़ाई करती चली गई, अच्छा किया, बायो में मेरा काफी रुझान था, काफी इंटरेस्ट था, तो बायो लिया। जब मैंने प्री मेडिकल एग्जाम दिया तब मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आए कि मैं एमबीबीएस कर पाऊं, हालांकि इतने नंबर थे कि मुझे डेंटल में एडमिशन मिल सकता था, लेकिन उस टाइम ऐसा लगा कि नहीं करना है तो एमबीबीएस ही करना है। तो जब मैं कॉलेज में एंटर होने वाली थी, उस टाइम मेरा 12th होने के बाद, मेरे फादर तब तक रिटायर्ड हो चुके थे और वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे।
0: अच्छा,
1: हालांकि उन्होंने और मेरी मम्मी ने कभी भी मेरे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला कि तुमने ये करना है या वो प्रोफेशन चुनना है, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरे फादर के मन में था कि मेरी बेटी भी इंजीनियर बने उन्हीं की तरह। तो उन्होंने देखा कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूं, तो उन्होंने बोला मेडिकल के तरफ अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, इंजीनियरिंग कर लो, ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है, वहां से भी तुम कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लोगी, इतना विश्वास उनको मेरे ऊपर था। सो वहां से शुरुआत हुई कि ठीक है, इंजीनियरिंग की एग्जाम दी, मुझे एडमिशन मिला नागपुर यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिला, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच उस टाइम की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एडमिशन ली, एंड फिर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया इन इंजीनियरिंग। तब तक लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता था कि आधा सपना तो मेरा रह गया है जो है डॉक्टर बनने।

0: हाँ
1: लेकिन जो बचा आधा था शायद वो भी कहीं छूटता नजर आ रहा था मुझे। लेकिन एक और बात बताना चाहूंगी विनीता जी, कि ये हम जो कहते हैं कि हमने सपना छोड़ दिया, वो बात नहीं होती, सपना हमें नहीं छोड़ता, ये बात होती
0: ओह सो ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी बात कही है आपने।
1: है। सो कहीं ना कहीं वो सपना मुझे ही चेस कर रहा था कि नहीं, तुम अगर डॉक्टर नहीं बनी हो तो डिफेंस फोर्सेस में तो पक्का जाओगी। सो दैट वॉज द पॉइंट जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जहां पे एयरफोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर में रिक्रूटमेंट के लिए आए। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी जा रहे थे तो मैं भी गई उनके साथ कि चलो जाते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर तक हमारा प्लेसमेंट हो चुका था वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनीज में।
0: हाँ
1: सो लाइफ तो सेट थी एज अ यंग पर्सन। मुझे लगता था लाइफ में और क्या चाहिए, आपका ग्रेजुएशन हो गया है, आपकी नौकरी लग चुकी है, पैसे कमाना है एंड लाइफ में मजे ही मजे हैं, ये होता था उस टाइम। एंड अभी भी काफी यंग लोगों का दिमाग में माइंडसेट ये होता है। बट स्टिल जैसे मैंने आपको बताया कि वो सपना था मेरे मन में कि वर्दी तो पहननी है, यूनिफॉर्म वॉज माई ड्रीम। सो वैसे करके देन रिक्रूटमेंट के लिए हम गए, एयरफोर्स ने एग्जाम्स कंडक्ट की। उस टाइम फास्ट ट्रैक एग्जाम एक होता था, उसमें एग्जाम हुई, क्लियर किया। एंड द नेक्स्ट थिंग जो मेरे ध्यान में है, मेरे जहन में है, कि हम मैसूर पहुंचे, मैं और मेरे फ्रेंड्स, एसएसबी देने के लिए। और आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, एसएसबी के जो वो 5 दिन होते हैं, मतलब वो लाइफ के आर द बेस्ट डेज, दैट इज द गोल्डन पीरियड। और एक संदेश जो मैं अभी देना चाहूंगी देश के सब यंग बच्चों को, कि रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन यू शुड एंजॉय, यू शुड एक्सपीरियंस दोज 5 डेज ऑफ एसएसबी। वो आपको आपके खुद के बारे में इतना सिखाता है जो और कहीं आपको सीखने नहीं मिलेगा।
0: अमेजिंग। और ना सिर्फ सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बल्कि ये आपका वो सपना पूरा करता है कि आपके तन पर यूनिफॉर्म हो, मन में जज्बा हो और हमेशा आगे बढ़ने के लिए कदम उठें।
1: जी बिल्कुल।
0: और साथ के साथ आपके आपके कदम तो जमीन पर नहीं, आपके कदम तो आसमान के लिए है ना। तो आपने डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का सपना ही नहीं देखा, बल्कि इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन भी की। इसके आगे की यात्रा की बात आप से बिल्कुल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी इस आसमानी यात्रा की शुरुआत के लिए ये गाना विशेष रूप से आपके लिए समर्पित।

0: जी दोस्तों, संदेश टू सोल्जर्स में स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और प्रतीक्षा जी, एक बात जो मैं आपसे जानना चाहती हूं इस गाने के बाद पर्टिकुलरली, कि क्या कभी कोई ऐसा है जिसने ये गाना आपको डेडिकेट किया है या कोई आपके लिए ये गाना गाता है?
1: जी हाँ बिल्कुल, ये है मेरे हस्बैंड जो खुद एयरफोर्स में है।
0: ओह नाइस, अच्छा अच्छा, वो भी एयरफोर्स में?
1: जी हाँ, वो अभी सर्विंग है, विंग कमांडर अभिषेक लूथरा मेरे हस्बैंड है। एंड बिल्कुल ये गाना वो कभी हमारे लिए गाते हैं, कभी हम उनके लिए गाते हैं।
0: बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक बात बताएं, आप एयरफोर्स ने आपकी पर्सनालिटी को कैसे बदल दिया? क्या उसका क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव तो नहीं ही है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आपकी पर्सनालिटी पे आया? क्योंकि आपने अभी तक जो कुछ भी अपने बारे में बताया प्रतीक्षा जी, मुझे लगता है कि आप तो पहले से ही काफी फोकस्ड और डेडिकेटेड रही, तो एयरफोर्स ने भी कुछ आप में बदला?
1: बिल्कुल, लेकिन एयरफोर्स जाने से पहले जो एक एडवाइस मेरे फादर ने मुझे दिया था, मतलब जस्ट मैं निकल रही थी एयरफोर्स अकेडमी डुंडिगल के लिए, और एक चीज जो आखिरी में उन्होंने मुझे जाते वक्त कही थी कि बेटा ये वर्दी है, ये कोई कपड़ा नहीं है, इसकी इज्जत करना, बिकॉज ये तुम्हें सम्मान और एक पहचान देगी। और उस लास्ट थॉट्स, लास्ट सेंटेंसेस के बाद जब मैं एयरफोर्स अकेडमी पहुंची, सो एक वो अलग दुनिया थी। जैसे मैंने आपको बताया मेरे फादर आर्मी में थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बताया कि ट्रेनिंग में होता क्या है। और जब मैंने उनको वापस जाके पूछा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, तो उन्होंने बोला वो एक्सपीरियंस तुम्हारा खुद का था और मैं चाहता था कि वो एक्सपीरियंस तुम लो और उसको अपनी तरीके से ढालो, ना कि कोई पहले से दिमाग में कोई चीज लेके चलना, वो ठीक बात नहीं है।
0: दैट्स सो अमेजिंग। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपने ये जो बात कही है ना, ये उन सभी फादर्स को सुनना चाहिए जो अपने बच्चों के स्कूल बैग्स अपने कंधों में रखकर उनको बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए आते हैं। दे शुड लर्न कि प्रतीक्षा जी के फादर ने कहा था कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग खुद अपनी नजरों से अपने एक्सपीरियंस के साथ समझनी है, वही तुम्हारे काम आएगी। ब्यूटिफुल, बहुत ही खूबसूरत बात। अच्छा, अब ट्रेनिंग की बात आपने कही है, तो ट्रेनिंग के दौरान सबसे कठिन चुनौती, सबसे मुश्किल घड़ी आपके लिए कौन सी रही?
1: वैसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एज एक्स फौजी अगर मैं ये बोलूं तो कुछ लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम जो सबसे मुश्किल चीज थी मेरे लिए थी, वो थी रनिंग।
0: रनिंग?
1: जी हाँ, ऑल्दो मैं स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हूँ, मैं वॉलीबॉल खेलती थी, मैं बास्केटबॉल खेलती थी, लेकिन जो अकेडमी में जिस लेवल की रनिंग होती है, क्रॉस कंट्री होती है, उससे मैं डर जाती थी शुरुआत में। बहरहाल ट्रेनिंग होती ही इसके लिए कि आपको पहले ट्रेनिंग में मेंटली टफ बनाया जाता है, उसके बाद आप फिजिकली टफ तो बन ही जाते हो। सो वो एक शुरुआत की चुनौती थी जो मैंने कर ली थी, वो पार कर ली थी मैंने। लेकिन हाँ जी, अगर आप पूछेंगे तो एक रनिंग एक मेरा बहुत बड़ा खौफ था।
0: इसीलिए आपने जमीन छोड़कर आसमान चुना।
1: हो सकता है।
0: अच्छा एक बात और बताइए, विंग कमांडर बनने की जो आपकी जर्नी थी, उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि माइलस्टोन्स रहे आपके लिए?
1: जी, विंग कमांडर की जर्नी बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी, बिल्कुल भी आसान नहीं है। डिफेंस फोर्सेस में जाना ही आसान नहीं होता है, क्योंकि मैं चाहती हूं ये एक और चीज बताना देश के सैनिकों को और जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, कि डिफेंस केवल एक नौकरी नहीं है,

0: ये एक जीवन शैली है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, तो आपको पूरी तरह अपने में ढालनी पड़ती है. बिल्कुल आपको आपकी पास्ट लाइफ, जो आप एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले जो चल रही थी, जो आपको लाइफ, आपको पूरी तरह छोड़नी पड़ती है. क्योंकि एक वे ऑफ लाइफ का कहने का मतलब ही ये है कि एक डिसिप्लिन लाना, डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट जो आपको आपके काम की तरफ देनी पड़ती है. तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं उस जर्नी में टू बिकम अ विंग कमांडर, स्टार्टिंग विथ पोस्टिंग्स. आपको अलग अलग जगह पोस्टिंग जाना होता है, आपके फ्रेंड्स छूट जाते हैं और आपको एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करना होता है, आपको बंदूक चलानी होती है, आपको फिजिकल फिट रहना पड़ता है. तो सारी चीजें आपके लाइफ में एक साथ हो रही होती है. सो दैट इज, दैट कम्स फ्रॉम योर मेंटल फिटनेस एज वेल एज फिजिकल फिटनेस. तो ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग में ही आपको तैयार किया जाता है ताकि आगे के लाइफ में आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें.
1: अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, हम डिफेंस फोर्सेस की बात कर रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस में डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है आपकी नजर में क्या है? वैसे तो मुझे लगता है कि हमारी सबकी जिंदगी में, चाहे वो फोर्सेस में हों या सिविलियंस हों, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन तो सबकी लाइफ में होना ही चाहिए. लेकिन जब हम फोर्सेस की बात करते हैं तब हम इसे बहुत हाईलाइटेड रूप में देखते हैं, तो एज पर यू इसकी क्या इम्पोर्टेंस है?
0: जी देखिए, डिसिप्लिन, आपने जैसा बोला कि डिसिप्लिन हर एक के लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है. विदाउट डिसिप्लिन आप, मुझे नहीं लगता आप कभी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं. एंड सक्सेस का पैरामीटर हर एक के लाइफ का अलग होता है. सो डिसिप्लिन आर्म फोर्सेज में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए आर्म फोर्सेज बना ही इसलिए ताकि वॉर टाइम में हम काम कर सके और देश को प्रोटेक्ट कर सके. सो उसके लिए पहला स्टेप ही, पहला कदम ही डिसिप्लिन है. अगर आप अपने काम में, आप अपने लाइफ में हर एक चीज को लेके डिसिप्लिन है तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी आएगा. और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. सेकंड सेकंड का भी बहुत फर्क पड़ता है. अगर आप वॉर टाइम सिनेरियो देखेंगे तो हर एक सेकंड का बहुत बहुत मेजर इंपॉर्टेंस होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन, ऑन ग्राउंड, इन एयर, फ्लाइंग, एवरीथिंग, हर एक जगह पे टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. सो इसीलिए जैसे आपने कहा बहुत हाईलाइट किया जाता है क्योंकि डिफेंस फोर्सेस चलती ही इन दो चक्कों पे है, वो है डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट. कोई भी एक चीज अगर खराब हुई तो आपकी गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाएगी.
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने. अच्छा आप उन खास लोगों में से हैं, या कहना चाहिए कि उन महिला सैन्य अधिकारियों में से हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स में लीडरशिप, डिसिप्लिन और टेक्निकल एक्सीलेंस का एग्जाम्पल दिया है. तो इस नजरिए से मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपने लीडरशिप का सबसे बड़ा पार्ट खुद क्या सीखा है, मतलब आपकी नजर में लीडरशिप की कौन सा ऐसा लेसन है जिसने आपकी पर्सनैलिटी को वो बनाया है जो आज आप हैं और बड़े फक्र से सब आपका नाम लेते हैं.
0: जी लीडरशिप में मैं तीन चीजें आपको बताना चाहूंगी. एक है पेशेंस एंड पेशेंटली लिसनिंग, खुद धैर्य रखना और धैर्य के साथ सामने वाले की बात सुनना, ये बहुत जरूरी है. दूसरी बात आती है ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल. आप अपनी टीम को अगर आप बोल रहे कुछ करने के लिए, पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा. अगर आप बोल रहे इंटेग्रिटी होनी चाहिए तो आपको इंटेग्रिटी दिखानी होगी, आपको एथिकली एक्ट करना पड़ेगा, वो होता है लीड बाय एग्जाम्पल. और तीसरी चीज है आपकी टीम. आपकी टीम आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, तो आपकी टीम का ख्याल रखना ये आपकी जिम्मेदारी होती है. दैट इज वॉट इज लीडरशिप फॉर मी.
1: अमेजिंग, इतनी खूबसूरत डेफिनेशन आपने लीडरशिप की दी है. तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छी लीडर ना सिर्फ डिफेंस फोर्सेज में या इंडियन एयरफोर्स में रही हैं, बल्कि अब जो आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं आपने वहां भी लीडरशिप की एक मिसाल कायम की होगी, मैं ऐसा मान के चलती हूं. तो ये तो खैर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई आपने, ये कहकर कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की क्या इम्पोर्टेंस रही है. बट अदरवाइज अगर आपसे ये कहा जाए कि डिफेंस की फील्ड में महिलाओं की भूमिका को आप कैसे देखती हैं, ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं कि ना सिर्फ एक महिला होने का गौरव आप रखती हैं बल्कि एक बेहतरीन ऑफिसर के रूप में आप जानी जाती हैं. आप रिटायर्ड हुई हैं लेकिन

0: आज भी लोग आपका नाम बहुत सम्मान से लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं की क्या भूमिका है इस फील्ड में, रक्षा सेवाओं में खासकर?
1: जी देखिए, महिला या मर्द, मुझे लगता है दोनों में कोई फर्क नहीं है। फॉर दैट मैटर इवन डिफेंस फोर्सेस में कोई जेंडर बायस नहीं है
0: जी।
1: क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अगर मैं आपको मेरी ट्रेनिंग के डेज में लेके जाऊं तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक महिला होके मैंने नहीं की है या किसी और मेल ऑफिसर ने हमारे साथ जो थे ट्रेनिंग में उन्होंने ज्यादा की है या हमने कम की है। तो अगर ट्रेनिंग में भेदभाव नहीं है तो आगे भी कोई भेदभाव नहीं होता है। सो एज ए वुमेन अगर आप मुझे पूछे तो बहुत जरूरी है कि आप आपके मेल काउंटर पार्ट्स के साथ कंधे से कंधा मिला के चले। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो बंधन होता है वो हमारे दिमाग में होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। वो जो एक सेल्फ डाउट होता है वो हमारे अंदर होता है ना कि बाहर। बाहर सब को दुनिया एक समान देख रही है और स्पेशली डिफेंस फोर्सेस सबको एक समान ही देख रही है। तो एज अ वुमेन मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि आपने अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए। आप उतनी ही केपेबल हो जितना एक मेल ऑफिसर होते हैं।
0: जी बेहतरीन। मुझे लगता है कि कोई जेंडर बायस एटलीस्ट डिफेंस फोर्सेस में नहीं है, ये बात आपकी इस स्टेटमेंट ने तो साबित कर ही दी है। तो अगर किसी के मन में ये वहम हो कि औरत है ये कैसे कर पाएगी या महिलाएं कैसे इस फील्ड में जा सकती हैं या आर्मी नेवी एयरफोर्स ये औरतों के लिए नहीं है, उन सब की बात का एक बहुत ही करारा जवाब आपने अपने इस स्टेटमेंट के द्वारा दिया है। हैट्स ऑफ टू यू, आई रियली गिव यू अप्लॉज फॉर दिस आंसर। और मुझे लगता है कि जिस तरह आपने इंडियन एयरफोर्स को अपनी भूमिका से बहुत गौरवान्वित किया है तो ये बादलों का गाना तो आपके लिए बनता ही है।

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त विनीता बेदी। मैं बहुत सारी बातें कर रही हूं प्रतीक्षा जी से, बहुत कुछ अच्छा जानने को भी मिल रहा है और काफी कुछ आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो एक बात जो मैं आप सबकी तरफ से प्रतीक्षा जी से पूछना चाहती हूं वो ये है कि आपके लिए अब तक अगर पूछा जाए तो आपकी जिंदगी का सबसे गौरव भरा पल कौन सा था, आपका प्राउडेस्ट मोमेंट ऐसा कौन सा था जिस पर आपको लगे कि ये वो पल है जो मैं सपना देख रही थी जिसका।
1: विनीता जी, वैसे तो काफी है। पहला तो था और अभी भी है, जो जिस दिन मैंने यूनिफॉर्म पहली बार पहनी वो पक्का मेरा एक प्राउडेस्ट मोमेंट था। बट उसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि हर सैनिक के जीवन में एक ऐसा पल होता है जो सिर्फ याद नहीं रहता लेकिन उनके रूह में बस जाता है। और मेरे जीवन में एक ऐसा पल आया था 26 जनवरी 2015 में। 26 जनवरी 2015 में जो आरडी परेड हुई थी,
0: रिपब्लिक डे परेड, हाँ जी,
1: उसमें आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स का इंडिविजुअल ऑल वुमेन कंटिंजेंट बना था। और मैं उस कंटिंजेंट का पार्ट थी एयरफोर्स की तरफ से।
0: ओह वंडरफुल।
1: अब आप सोचिए, एक लड़की जिसका बचपन का सपना था यूनिफॉर्म पहनना, देश सेवा करना, अब वो देश के सबसे बड़े मंच पे खड़ी थी, वो था राजपथ। और पहले तो उसका सिलेक्शन हुआ, पहले तो 2 महीने की उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर, क्योंकि जनवरी एंड में होता है, 26 जनवरी को होता है पूरा परेड। तो पहले तो जैसे मैंने आपको बताया वो मेंटल टफनेस से स्टार्ट होती है, फिर फिजिकल टफनेस पे जाती है, बिकॉज वो आसान नहीं होता है। वो परेड होती है लगभग 14 किलोमीटर लंबी परेड, जो आपको पूरे कंटिंजेंट के साथ ताल में ताल मिला के रिदम में आपको मार्च करते हुए जाना होता है
0: पूरे 14 किलोमीटर।
1: बिल्कुल। तो वो सिर्फ एक मार्च नहीं होती, वो एक गौरव होता है और एक अनुशासन होता है कि आप आपकी पूरी टीम के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चले। और वो भारत की एक शक्ति का प्रदर्शन होता है पूरे विश्व के सामने।
0: ट्रू।
1: सो जब हम राजपथ पे चले, तब मार्च किया कंटिंजेंट के साथ, और फिर वो पल आया जहां हमने भारत के सुप्रीम कमांडर जो राष्ट्रपति थे उस समय के, श्री प्रणब मुखर्जी जी, और उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री जी थे श्री नरेंद्र मोदी जी, और भारत के इतिहास में पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में एज चीफ गेस्ट फॉर दैट ईयर, मिस्टर बराक ओबामा। सो एक वो जो सलामी थी
0: जी,
1: वो सिर्फ हमारी ट्रेनिंग नहीं थी, वो एक हर लड़की की मेहनत थी, हर महिला का सपना था, और उसके साथ हमको पता था पूरे देश का विश्वास है हमारे साथ। बट आज भी मैं उस पल को याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि वो एक सिर्फ पल नहीं था, बट वो एक हर महिला, हर लड़की, इस देश की हर लड़की का एक वो सपना था कि उस राजपथ पे मैं चलूं। क्योंकि उस दिन मैंने एक और बात सीखी थी कि सीमाएं बाहर नहीं होती, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो हमारे दिमाग में होती है। और जब आप वर्दी पहनते हैं तो आप खुद को प्रूव नहीं करते, लेकिन

0: आप आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाते हैं, तो मुझे लगा वो उस तरफ हमने एक छोटा सा योगदान दिया था।
1: कितनी सुंदर बात आपने कही है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक मिसाल बनते हैं, आप उनके लिए एक रास्ता तैयार करते हैं जिस पर चलकर वो आपसे भी आगे निकल पाएं, आपके सपनों को और अधिक बुलंदियों पे पहुंचा सके। बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत सुंदर विचार हैं आपके। प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, ये जब आपने अपना अनुभव बताया रिपब्लिक डे परेड पर, तो उस वक्त जब आप राजपथ पर थी, आपको अपने बचपन के उस सपने को पूरा होते देखने की खुशी तो होगी ही, साथ में ये भी फीलिंग थी कि आपने अपने पापा को प्राउड किया है आज।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, और मैं फिर से उस चीज पे जाना चाहूंगी जहां मैंने बोला कि आप सपना छोड़ सकते हो लेकिन सपना आपको नहीं छोड़ता है। क्योंकि एक और चीज मैं बताती हूँ आपको, जब मैं स्कूल में थी तब मैं एनसीसी में थी और तब भी मुझे मौका मिला था रिपब्लिक डे परेड पे जाने का, लेकिन तब दिमाग में था कि मेरी स्टडीज मिस हो जाएंगी, मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी, क्योंकि तब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। तब मैंने दिल पे पत्थर रख के अपनी मैम को बोला था कि मैम मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी। तो वो सपना मेरा शायद अधूरा रह गया था जो एयरफोर्स ने पूरा किया है।
1: हाउ स्वीट, कितनी प्यारी बात है ये कि आपने बचपन के सपने को बड़े होकर जिया, और ना सिर्फ जिया बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बना दिया। बहुत ही सुंदर। अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात बताइए, आप तो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा रही हैं, तो बहुत थ्रिल माना जाता है इस डिफेंस फोर्स को, तो आपका भी कोई थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा होगा जो आज आप हमारे साथ बांटना चाहेंगी?
0: जी बिल्कुल, और थ्रिलिंग तो डेफिनेटली है, एयरफोर्स इज फुल ऑफ थ्रिल, और उस थ्रिल में मैंने एक जो काम किया था वो था पैरा जंपिंग का। पैरा जंपिंग एक ऐसा अनुभव रहा है मेरी लाइफ में जिसने मुझे बाहर से तो बदला ही है, जैसे एयरफोर्स ने मुझे बाहर से बदला है, लेकिन पैरा जंपिंग ने मुझे अंदर से बदल दिया।
1: क्या बात है।
0: सो उसका अनुभव ऐसा रहा कि Mi-17 हेलीकॉप्टर से आपको 5 जंप्स करनी होती है, तब आप ट्रेन पैरा जंपर बनते हैं।
1: और ये जो 5 जंप करनी होती हैं, ये किसी टाइम पीरियड में करनी होती है?
0: जी ये 2-3 दिन के पीरियड में करनी होती है, क्योंकि मॉर्निंग जंप्स होती है, आपकी नाइट जंप्स होती है, सो वो सब मिला के 2-3 दिन में आपको कंप्लीट करनी होती है।
1: 2-3 दिन में?
0: जी हाँ। और उसके पहले अगेन हर एक चीज की ट्रेनिंग तो होती ही है, तो ट्रेनिंग के बाद फिर आप में वो कॉन्फिडेंस आता है कि आप जंप करें, और वो लगभग 3,000 से 5,000 फीट की ऊंचाई से जंप की जाती है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वो सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं होता है, वो अपने अंदर का जो डर है वो निकालने के लिए होता है। और आपको मैं एक और चीज बताऊंगी, उस टाइम तक मुझे ऊंचाई का डर था, थोड़ा सा तो डर रहता था मुझे। और जब मेरी पहली जंप थी, मैं इतनी एक्साइटेड थी उस पहले जंप के लिए, क्योंकि वो होता है ना, इट्स एन अननोन टेरिटरी, आपको पता नहीं है क्या होने वाला है। तो पहली जंप तो बहुत मजेदार थी और इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस, इतना खूबसूरत अनुभव था वो कि आपको पता नहीं होता आगे क्या होने वाला है, बस एक एड्रेनलिन रश होता है, एक एक्साइटमेंट होती है
1: जी।
0: क्योंकि जैसे कहते हैं, कभी कभी अनजानी चीज भी डराती नहीं है लेकिन आपको उड़ना सिखाती है। लेकिन दूसरा जंप जो था वो थोड़ा अलग था, क्योंकि तब तक मुझे पता चल चुका था कि पहले जंप में हुआ क्या था। तो दूसरी जंप में मुझे ऑनेस्टली बताओ डर लगा था, और मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी सुसाइड मिशन पे निकली हूं।
1: ओह माय गॉड।
0: बट तीसरे जंप के बाद मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी, और एक मैजिकल फीलिंग थी उस टाइम पे, क्योंकि आप जब जंप कर जाते हो आप वहां पे होते हो जहां पे और कोई शोर नहीं है, कोई नहीं है आपके आसपास, सिर्फ आप हो, चारों तरफ सन्नाटा है और आपकी अपनी सांस से आप सुन पा रहे हो।
1: इनर स्ट्रेंथ।
0: वो एक ऐसा पल है जब आपको लगता है कि एक पक्षी होना कैसे लगता है, दैट इज एक्चुअल फ्रीडम, एंड वो एक पॉइंट होता है जहां आप खुद से कनेक्ट करते हो।
1: Awesome. कितना सुंदर एक्सपीरियंस रहा होगा आपका, और सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं अगर आप देख सकें तो मतलब ऐसा, जब आप ये अभी एक्सप्लेन कर रही थी, ये बता रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम आपके साथ खड़े हुए और आपके साथ ही जंप करने के लिए नीचे झांक रहे हैं और भगवान को याद कर रहे हैं। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन तो बहुत ही खूबसूरत है। आई मस्ट से कि आप बताती

0: बहुत अच्छा है अपने अनुभव। और एक और बात बताइए, देखिए अभी आपने अभी तक जो भी बात बताई वो आपकी सक्सेस स्टोरीज थी,
1: जी
0: क्या ऐसा कभी हुआ कि आपको किसी असफलता का सामना करना पड़ा हो? और अगर ऐसा हुआ तो फेलियर का डर और फेलियर से उबरना, मतलब उस डर को पीछे छोड़ना या उस डर से बाहर निकलना, ये आपका तरीका क्या है इसके लिए?
1: एक कहीं मैंने ये बड़ी अच्छी चीज पढ़ी थी कि असफलता अंत नहीं होता, ये बस एक नया रास्ता दिखाना और उसका दिखाने का तरीका होता है।
0: जी
1: सो फेलियर्स तो बिल्कुल आए हैं लाइफ में, बहुत फेलियर्स है और वो जिंदगी ही क्या जहां पे फेलियर्स ना हो।
0: हाँ
1: लेकिन
0: बिल्कुल
1: आपको लाइफ सिखाती है कि आप गिरिए, आप उठिए, आप अपने कपड़े झाड़िए, साफ कीजिए और आगे बढ़िए, ये जिंदगी है।
0: बहुत सुंदर।
1: तो आप जैसे बता पूछ रही हैं कि फेलियर्स काफी आए हैं, लेकिन हाँ इनिशियली एक जो सेटबैक लगता है आपको, एक थोड़ा सा धक्का सा लगता है, आपने उस पीरियड से जल्दी उबर जाना चाहिए। अगर आप उस फेज में ज्यादा दिन तक रहे या ज्यादा टाइम तक रहे, फिर वो फेलियर आपको खा जाएगा। एंड वही मेंटल टफनेस डिफेंस फोर्सेस हर एक इंसान को सिखाती है, रादर डिफेंस फोर्सेस तो सिखाती है, लेकिन एक संदेश जो मैं सबको देना चाहूंगी कि ये आपने खुद में भी डेवलप करना चाहिए कि फेलियर्स तो आएंगे, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सबके लाइफ में फेलियर्स तो आए हैं, लेकिन कितनी जल्दी आप उन फेलियर्स से उभर के आगे बढ़ना सीख लेते हैं वो एक्चुअल लाइफ है।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मुझे लगता है कि जो भी आपके साथ थोड़ी देर भी बैठ जाता होगा ना प्रतीक्षा जी, वो एक बेहतर इंसान बनकर ही बाहर निकलता होगा। आई एम श्योर फॉर दैट, बिकॉज यू हैव सच पॉजिटिव वाइब्स, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है आप में जो हर किसी को जो भी आपके संपर्क में आता है उसको प्रेरित ही करता है, मोटिवेट ही करता है। अच्छा, आपकी इस जब भी हम आपके एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो आपकी सेवा काल के दौरान ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा जिसने आपको बहुत इमोशनल किया हो और मोटिवेट किया हो?
1: इमोशनल किया हो,
0: जी
1: ऐसे तो काफी इंसिडेंट हुए हैं, क्योंकि जैसे अगर मैं बोलूंगी कि कुछ चीजें, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रहे हैं लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, जो स्टार्ट किए हैं बहुत ज्यादा मेहनत करके, रिसर्च करके, और फिर कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अलग अलग उसके रीजंस हैं। कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, बिकॉज देखिए गवर्नमेंट सर्विस है, आपका बजट होता है, काफी सारी चीजें होती है, तो किसी भी रीजन के वजह से शायद वो आगे ना बढ़े, तो तब बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपने, मतलब मेरे मेरे नजरिए से मैंने उसमें अपनी लाइफ झोंक दी थी, लेकिन अगर उसका जो आउटकम मैंने एक्सपेक्ट किया था वो अगर नहीं मिला तो बुरा तो लगता है,
0: जी
1: लेकिन ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। एंड वही सेटबैक्स है जिसको आपको पीछे छोड़ देना है और आगे बढ़ते चले जाना है।
0: इसी बात पर हम एक गाना सुनते हैं जो मोटिवेट भी करता है और इमोशनल भी कर देता है। केसरी फिल्म का गाना जो आपको बेहद पसंद है, संदेश टू सोल्जर्स में आज आप हैं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी के साथ।

0: संदेश टू सोल्जर्स सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि विनीता बेदी के साथ, और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी, जिनकी बातें न केवल मोटिवेट करती हैं बल्कि सुनकर ऐसा लग रहा है, ऐसा जज्बा पैदा हो रहा है कि आज ही एयरफोर्स ज्वाइन कर ली जाए। तो मेरे मन में जब ये विचार आ रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि जितने युवा ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे उनके मन में किस तरह के विचार आ रहे होंगे। तो मैं अब आपसे यही पूछना चाहती हूँ प्रतीक्षा जी कि अगर युवा इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, पहली बात, और दूसरा एफकैट और सीडीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आपकी क्या सजेशन है युवाओं के लिए।
1: जी विनीता जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम, ये मंच उसी के लिए है ताकि हम जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो फौज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हम उनको अच्छा संदेश दें ताकि वो ज्वाइन कर सके। सो तैयारी के हिसाब से देखिए, मैं एक चीज शुरुआत में कहना चाहूंगी कि अगर आपका लक्ष्य नौकरी है तो डिफेंस फोर्सेस आपके लिए सही जगह नहीं है, लेकिन अगर आपका सपना देश सेवा है तो इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। तैयारी के हिसाब से पहले तो पक्का आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, पढ़ाई में मन लगाइए, क्योंकि आपने ये चीजें सुनी होंगी कि फौज में पढ़ाई नहीं है, जबकि मैं बताना चाहूंगी फौज में बहुत ज्यादा पढ़ाई है, और जो सीनियर ऑफिसर्स भी हैं जो जनरल ब्रिगेडियर बन जाते हैं वो भी पढ़ाई करते रहते हैं, तो पढ़ाई का कोई पीछा नहीं छूटता है अगर आपने फौज ज्वाइन कर लिया। तो ये एक दिमाग में जरूर रखिए कि पढ़ाई तो रहेगी। तो आप पहले से खुद को प्रिपेयर कीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अच्छे से आप अपना 12th पास कीजिए, अच्छे नंबर लाइए, और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ग्रेजुएशन में भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आजकल जो अलग अलग तरीके के एग्जाम्स हैं, एफकैट है, जैसे एयरफोर्स के लिए एफकैट है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, और तो इसमें इनिशियली आपके जो ग्रेजुएशन है उसके बेसिस पे एग्जाम होता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग ब्रांच में आप एडमिशन ले रहे हैं या इंजीनियरिंग ब्रांच में आप आना चाहते हैं एयरफोर्स में, सो आपके इंजीनियरिंग का जो बैकग्राउंड है उसके बेसिस पे आपको सवाल पूछे जाते हैं, प्लस थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज जो सामान्य ज्ञान होता है उसके बारे में भी आपने थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप डिफेंस फोर्सेज में जा रहे हैं एंड उसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पेपर होता है, एक एग्जाम होता है। तो ऑल एंड ऑल पूरी तरीके से आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, उससे आपका कोई निजात नहीं है। उसके अलावा एक आपको मेंटल टफनेस आपको खुद में करना पड़ेगा, आपको उसकी

0: तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मेंटली टफ हैं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि इमोशनल लोगों की जगह नहीं है, नहीं, ये बहुत अलग अलग चीजें हैं. आप इमोशनल हो सकते हैं लेकिन आपको मेंटली टफ रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेंटली टफ है तभी आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाएंगे जो मोस्टली फिजिकल होती है. जो इनिशियल 6 महीने की ट्रेनिंग होती है वो ज्यादातर फिजिकल और कम पढ़ाई, और उसके बाद जब आप स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तब उसमें ज्यादा पढ़ाई होती है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आपकी कभी नहीं रुकती. मेरे लास्ट डे तक भी, जहां मैंने 14 साल कंप्लीट किए एयरफोर्स में, आखिरी दिन तक फिजिकल एक्टिविटी चल रही थी. पीटी, परेड, रनिंग, जिससे मैं बहुत डरती थी, वो मैंने आखिरी दम तक किया है एयरफोर्स के, और अभी भी करती हूँ, और इसीलिए फिजिकली फिट रहती हूँ. तो ये कुछ प्रिपरेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको अगेन डिसिप्लिन रखना पड़ेगा. आपकी लाइफ में आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपको खुद को कमिट करना पड़ेगा कि हाँ ये मुझे करना है. अगर आपने वो सपना देखा है तो आप वो सपना जिएंगे, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते.
1: वाह, कलाम साहब ने ये बात कही थी,
0: जी
1: बहुत सुंदर। और ये जो आपने एक संदेश दिया है सभी युवाओं को, मुझे लगता है कि हालांकि अभी बहुत कुछ मुझे आपसे बात करनी है, जानना है, लेकिन एक ही छोटा सा गाना मैं जरूर चलाना चाहूंगी आपकी इस बात पर
0: जी
1: कि जब आप कह रही हैं कि मेंटल फिटनेस के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है एंड वाइस वर्सा, तो ये एक गीत सभी युवाओं के लिए प्रतीक्षा जी की तरफ से।

संदेश टू सोल्जर्स का लास्ट सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए आपका यहां पर होना प्रतीक्षा जी। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे आज हमसे संदेश टू सोल्जर्स में बात कर

0: रही हैं, बहुत कुछ सजेशंस उन्होंने दी, बहुत कुछ मोटिवेशन दिया, लेकिन एक बात जाने बगैर भला हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं। आप स्वयं एक महिला हैं और महिला होने के नाते आपने विशेष प्रयास किए हैं अपनी जगह बनाने के लिए। तो सेना में करियर बनाने के लिए युवतियों के लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं को तो सभी संदेश देते हैं, बट विशेष रूप से युवतियों को आप क्या कहना चाहती हैं?
1: युवतियों को मैं एक चीज जो मेरे जहन में बसी है और जो मैंने भी सीखी है, ऐसा नहीं है कि मैं सीख के आई थी, लेकिन मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि सेल्फ डाउट कभी नहीं करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या वो लड़का कर रहा है, वो आदमी कर रहा है, तो क्या मैं ये कर पाऊंगी।

0: लड़का कर रहा है, वो आदमी कर रहा है, तो क्या मैं ये कर पाऊंगी? नहीं, आप सब कुछ कर सकती हो, सब कुछ। आप अभी देखिए, हर दुनिया में हर फील्ड में लड़की है, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पे लड़की नहीं है, नॉट ओनली इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वैसे ही मिलिट्री में भी, डिफेंस फोर्सेस में भी सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और आप में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि हाँ, ये मैं करूंगी। देखिए, फेलियर्स तो आएंगे, वो
1: बिल्कुल.
0: सबके लाइफ में आते हैं, वो जेंडर देख के नहीं आते हैं। सो फेलियर आते हैं, फेस इट, गिरिए, उठिए, कपड़े झाड़िए और चलते बनिए।
1: मुझे आपकी ये वाली बात तो बहुत ही पसंद आई है कि अगर कभी ऐसा कुछ होता भी है, गिर भी पड़ते हैं तो भी रुकना नहीं है, कपड़े झाड़िए और आगे चलिए. तो सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को जो फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती हैं, इस बात से डेफिनेटली प्रेरणा मिलेगी. अच्छा, आप अब क्योंकि रिटायर हो चुकी हैं, क्या आपके लाइफ में रिटायरमेंट के बाद कोई चेंजेस आए हैं क्या?
0: जी, सबसे बड़ा चेंज तो वो है, जो सुबह उठते से ही जो मैं यूनिफॉर्म पहनती थी, वो एक बहुत बड़ा चेंज है, और वो मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ कि रोज वो यूनिफॉर्म पहन के यूनिट जाते हैं, तो वो एक चीज मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। उसके अलावा देखिए, वर्क वाइज तो अभी भी मैं वर्किंग हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ, मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है आर्म फोर्सेस से, जितना मैं वहां अप्लाई कर सकती हूँ करती हूँ, तो कमिटमेंट में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन एक जो ऑरा होता है, और आजकल की जो जेंजी लैंग्वेज में कहते हैं वाइब, वो थोड़ी सी मुझे मिसिंग लगती है, क्योंकि बाहर कॉरपोरेट में काफी लोग अकेले अकेले से काम करते हैं, जबकि डिफेंस फोर्सेस में इट इज ऑलवेज अ टीम वर्क। सो आई जेन्युइनली मिस दैट टीम वर्क एंड द वाइब ऑफ डिफेंस फोर्सेस।
1: ओ स्वीट, ये जो वाइब आपने बताई है ना, मुझे लगता है कि किसी भी फील्ड में जब सब मिलकर कोई काम कर रहे होते हैं तो अपने आप वो काम भी बहुत अच्छा होता है, और एक वाइब तो पॉजिटिविटी की रहती ही है. अच्छा, महिला अधिकारियों के लिए इंडियन एयरफोर्स में क्या क्या ऐसे अवसर हैं कि वो भी आपकी तरह अपने आप को एक प्राउड ऑफिसर कह सकती हैं?
0: पहली बात होगी, किसी चीज के लिए मना मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप अनकंफर्टेबल हो किसी चीज, कोई काम करने के लिए और तब भी आप हाँ बोल रहे हैं, नहीं। लेकिन आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप अपॉर्चुनिटी को भापे,
1: जी
0: और किसी भी चीज के लिए मना मत कीजिए, किसी भी चीज से डरिए मत कि ये होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलिए आप काम करिए, और आप में वो कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। तो वही कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर जगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो बाधाएं होती है, जो जो हम बाउंड्रीज बनाते हैं, वो हमारे दिमाग में होती है, बाहर कोई नहीं बना रहा हमारे लिए वो बाउंड्रीज, हम खुद ही बनाते हैं। तो अगर आपने वो बाउंड्रीज पार कर ली, आपने वो जो लक्ष्मण रेखा आपने पार कर ली, तो वर्ल्ड इज ऑन योर फिंगर टिप्स, आप दुनिया, पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर सकती हैं। वो
1: क्या बात.
0: कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत छोड़िए अपना।
1: तो आपको ये लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी, स्पेशली जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, वो अगर कॉन्फिडेंस का गहना पहन ले तो उन्हें फिर किसी और गहने की जरूरत नहीं पड़ेगी?
0: बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया, बिल्कुल वही गहना पहनना है हमने, और कोई पहने ना पहने, लेकिन कॉन्फिडेंस का गहना हमेशा होना चाहिए हमारे पास।
1: थैंक यू सो मच प्रतीक्षा ठाकरे जी. आज आप संदेश टू सोल्जर्स में आई हैं और आपने अपने इतने खूबसूरत अनुभव और उससे भी बढ़कर प्रेरक विचार हम सबके साथ बांटे हैं. मुझे लगता है कि डिफेंस फोर्सेस का इससे खूबसूरत उपहार हमारे श्रोताओं के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता. तो समय निकालने के लिए आपका आभार, अपनी पॉजिटिविटी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका आभार, और चलते चलते एक सल्यूट तो आपके लिए बनता ही है. तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम सभी को प्रेरित करने के लिए. आई होप आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा होगा आज यहाँ.
0: धन्यवाद विनीता जी, यहाँ पहली बात तो मुझे बुलाने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। और आखिरी में बस एक लाइन कहूंगी कि देश सेवा सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, ये एक ऑनर है, और जो ये ऑनर पा लेता है वो जिंदगी में कभी नहीं हारता। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका. और दोस्तों, सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स. हम सभी दिल से सलाम करते हैं अपने सोल्जर्स का. बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से प्रतीक्षा ठाकरे जी का. धन्यवाद. जय हिंद.